0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। फायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रही है, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाए। इतने सब फायदा और फायदा उठाने वाले ही है। आपका निमित्त भाव औरों को भी सहयोग देगा। बार बार रियलाइज करना, दिल से रियलाइज करना, क्या करना है क्या नहीं करना, नाक को 21 जन्म के लिए ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा देना और हाजी हाजी करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने अथॉरिटी बाप द्वारा मिली हुई है। पहले कोई भी संकल्प बोल कर्म करने के पहले बाप समान है या नहीं ये चेक करो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जब आपका विवेक हाँ करे हाजी, प्रैक्टिकल में लो। समान बनना है तो समान करना भी है, चलना भी है। बाप दादा तो हर बच्चे को बहुत बहुत बड़ी बड़ी से देखते हैं कि यही बनने बने थे और अवश्य बनना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे सोचते हैं

想si va a jartir este a pro papá

के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते बच्चों के बिना। बाप को भी मजा नहीं आता, जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं। ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता, अकेले नहीं रहते साथ में रहते, साकार में तो सात खान भाव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में

0: estaba abierta para mí.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Thank you.

0: Prince Valerby.
1: शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Mythic.

Sí.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंधा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाए, क्योंकि बाप दादा भूखा रहते हैं क्या? रहते हैं। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ। नहीं, अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंधा हुआ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए मन में आता है ना कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वो शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है ये हो,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शक्ति का आदर करते हो

0: मास्टर सर्वशक्तिवान बने। तो इतनी पावरफुल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम। बेहद बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि टेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है, उसमें हाथ आ जाती है, वो प्रवृत्ति नहीं होती। नाम और मान पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृद्धि कम हो जाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई मेरे बच्चे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

योग के अभ्यास करते हुए

जैसे जाओ वैसे अभी अभी

क्या चल नहीं है। मेरे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: DJ Frizzy.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुस्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो प्रवरों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अचानक की वार्निंग

0: इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक स्वमान देते हैं। हर बच्चा विशेष आत्मा बनो, संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो अभी दृढ़ता भाव ये अपना विशेष स्वमान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा अभी क्या चाहते? हर बच्चा क्यों कर बाप दादा कुछ समय से लेके ready।

awesome.

साधारण पुरुषार्थ में रहे। एक घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखति वो एक घंटा का साधारण पुरुषार्थ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मददगार जो हिम्मत का पहले पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और श्रम को बाबा आप कर लो ना बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा ठीक है पहले पाँव तो रखो, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय ये शब्द क्या आते हैं, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले वाह, जैसे हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Divertite.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ます。

Tomko, bedak.

سمرتی میں چلتی ہے، آپ سبھی انبوسی کے دیو

0: દિવસ મનાતે
1: સુનતે રહીએ શિવા રેડિયો જહાં હૈ આનંદ હી આનંદ.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक एक बच्चा, बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तुम बाप दादा अपने पाओ की माला से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में

0: रखेंगे। या वापस करेंगे या फेंक देंगे, क्या अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के रखना आपकी दिल।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सेवाओं के और मंगोत्साह की मुबारक तो थी, बहुत अच्छा कर रही है, करते रहेंगे, लेकिन हर समय हर दिन आप वर्ल्ड सर्वन, आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे, वर्ल्ड सर्वन, सर्वंट है तो सिर्फ शिवरात्रि के सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वंट, वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए। समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माए हो, विदेशी आत्माए नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और पढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती है, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कौन सी तीन चीज़?

corazón que hacia ti. Va a te conservar.

मेरा नहीं कह सकते। जीवन के संस्कार।

भी मेरे अधिकार से।

Ay, pues que no.

0: taken some effort. सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? See?

लगा।

समझने से।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बहुत अच्छी डर, बड़ी अच्छी लग रही है। वायुमंडल के प्रभाव में जिस बात समझ तो है, एक सेकंड में विदेह बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेह माना जैसे न्यारा हो गया, साथ ही सुबह हो, संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ, और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देंगे। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विधेय बने।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प वा जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आई है बच्चों का बोझ लेने के लिए तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया है, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र अच्छा बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी बहुत भारी हो गए, इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है बोझ? सबसे सुखम बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार के आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध के भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो, हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थ ही नहीं, कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करती है, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन जलाया नहीं, तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारी है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। Shakti Shali.

स्पष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त

0: Mädchen. Mädchen, Mädchen.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बहुत बेचारी दुखी है, बहुत परेशान। तो अभी रैम दिल बनो, रैम की लहर, बेहद की फैराग, फिरती द्वारा फैलो। अभी सभी साथ ऊंचे थे ऊंचे परम धाम में बैठ, बाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि तो वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते है ना। तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से ये बेहद की रैम का वायुमंडल

0: अच्छा, आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को आर्डर कर सकते हो, कर सकते।
2: I'm sorry.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आदत शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो दो जने हो सेंटर पर, कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा, अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
2: दूसरों को कराएंगे
1: भी और अपना अनुभव सुना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

rica. Yo te vendo ropa. Listen.

Mike.

ser 6. Cicada. Sarétenme. En Pajro Poki. Exercise Garo. Sí. Yo tipo.

0: 是的。Tinkling， 杰西，舍利基 ，exercise， 舍利库 ，tundrast rakhti hai， aise。Exercise मन को शक्तिशाली रखेगा। मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि ये exercise
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के अथॉरिटी में रहो। कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान उदी में रखा उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है माया आ गई, माया आ नहीं जाती लेकिन माया ने बाप को सुना है कि मेरे को आह्वान करते है तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते है माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ता है तो तो माया को आह्वान किया, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो बलवान कौन, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो माया बलवान हुई या आप, तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते। बाप भी मर्ज कर

बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही

बोल सकते नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल

0: बच्चे भी रहे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लोग सेवा में नवीनता क्या लाएं, जो अभी तक सेवाएं चली हैं उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं?
2: नयापन ये लाओ जो आने वाली है और लोगों नजदीक कम से कम स्टूडेंट तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बनावे, दिलो वे हमें ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है, अच्छा है चले जाते।
1: संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
2: अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बन

Σαλόνα, Τζέι. Spirit.

0: सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देंगे। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राज
1: नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए।

सुते हर कर्म में दिखाई दे, ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना अनुभव किसी

0: सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना। अभी इसकी आवश्यकता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी कभी लेफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये लेफ्तापन दातापन नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है।

0: से वापी की, लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा कि अचानक होना है और ऐसी सरकमटेंस में होना है, इसीलिए बाप को लेना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे रहे, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी, लेकिन और तीन सब्जेक्ट अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा। चारी में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आशा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को शरीर बनने का ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में शरीर बनना ही पड़ेगा। तो ये ड्रिल कोई के समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो ये एक मिनट शरीरी बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय समझते हैं ना, समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय समय जो भी निश्चित करो, एक सेकंड में अशरीरी आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं, ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी, नहीं तो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी पाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखने चाहिए। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वो आपके चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक है कि साधारण समझते हैं, ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है ना जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गए। लेकिन जिन्होंने भी उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपके प्रैक्टिकल चलन में चेंज देंगे। ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्श

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, ऐसा गंभीर हो के नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: भक्त दस्य

0: कोर्स का कोर्स कराना, शक्ति बढ़ने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति बढ़ने का कोर्स भी हो, जिससे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ भी हो

0: ये तो बाप दादा पहले ही सुना देते, क्योंकि माया सुन रही है, वो बहुत चतुर है। लेकिन आप माया कितने भी चतुर हो, आप तो सर्वशक्तिमान के साथी हो, माया क्या करे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप भी फ्रिश्ता ड्रेस जैसे बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे
2: Yes.

0: बदली करो जरूर, अब इसे संस्कार डालो। फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी मत किया, क्या हम अब से 108 के माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रोल ध्यान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। 9 वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा यही ऐसे बच्चों को वरदान देती है, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

小芳。

क्षमा करना ये एक कथा है, दूसरा

Sangue.

जो भी सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में,

0: Soval, pau, or pau nace, se va carna, y se pone.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसका

0: भगवान के दृष्टि से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहता है, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं हो। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा, और करता क्या? इसलिए आज जो होली का दिन है ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना तो बाप दादा ने भी कहती है तरस पड़ते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा भी बच्चों को मधुमेह

बच्चों के मन में खुशी

आगे बढ़ने में

Motherfucking man.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में कोई पुराने रावण के जायदाद पुराने संस्कार के रूप में
4: जी

Sie waren Objekt des

0: Sabine.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े बोले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की पंडाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर जिज्ञासु था, वह पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते, जिज्ञासु या पाप? Yeah. में स्पष्टता होती है। बोलेंगे एक बात, आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात जोड़ो, सिर्फ बोल में भी किस में मिठास होता है, किस में स्पष्ट कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है। तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन अभी फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस बार नंबर फाइनल नहीं होने, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए, या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए, नाम हो गया सेंटर की इंचार्ज, और 30 में से 15 हिल रही है, 15 ठीक है, तो क्या हुआ? सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्ति शांति रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए कदम कर, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज ही देखते रहे कि फलानी जगह हुआ, मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी। तो मुख्य बात है निश्चय को, यथारत निश्चय उसको पका करो। कहने में तो कह देती हूँ मैं आत्मा, और पाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं बोलता है, बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं बोलते, क्योंकि सिक्की लदे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के से बाप ने आपको ढूंढा, आप बाप को ढूंढ सके भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने साथ देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं, साथ देखी बाप ने काला है गोरा है, श्याम है सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा। तुम बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है, दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है, कहती है बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। होशियार है बच्चे भी, और बाप को खुशी है रखने वाले बच्चे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Pizza.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप तो खुश रहते हो इसकी मोबाइल।

0: 5G.
1: शक्ति द्वारा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से रुका हुआ भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: डबल विदेशी। परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? क्या करेगा? बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपने पांव में समा दे। बड़ी बड़ी बाकी साथ साथ अमृत वेले तो बाकी मिलेंगे और सारा दिन क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Oh।

Barbu.

कोई मांगे नहीं मांगे। लेकिन दादा कभी ये नहीं देखते

bellissima.

sucesso.

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने फोर्स से बोला जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वो राइट है। क्या गलत गलत को ठीक कर सकते? आजकल

0: साधन है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: But करने की शक्ति है। सवालों सागर में कितना कचरा डालते हैं, डालने वाले को वो कचरे के बदले कचरा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हजार कदम

से नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ले, गिफ्ट दे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये आशी है दृष्टि लेना भगवान से, समर्पित वालों की ये आशी है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समान, ऐसी दृष्टि लेना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाता है। इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो सम्मान और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति और

विशेष

विश्व के आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सा

विशेष पूर्वज आत्मा अनुभव करते हो अपने को, विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा।

जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ कर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की डाल डालिया है। सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कलप फिरके का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका कहाँ स्थान है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। जानते हो ना, इसे नशे से कोई भी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देगा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो तो रचता का इंतजार रचना करे न कर, मास्टर रचता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना। ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा लेकिन हर जन्म में राज परिवार राज अधिकारी आत्माओं के सभी संबंध में होगा तो विश्व परिवर्तन कही विश्व राज अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन, देते चलो तभी भविष्य में से किसको देंगे नहीं लेकिन सदा आपके राज में हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय की बनने का प्रारंभ होता है। इसलिए हिसाब नहीं करना इसने ये किया इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट और ग्रीटिंग्स क्या देंगे देखो। किसी को भी कोई किसी से प्राप्ति होती है ना तो उसके मुख से मन से ये शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक तो खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो। मनाती हूँ तो कहती है मुबारक हो। अगर आप जो भी सामने आवे मुख से ऐसे शब्द बोलो संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक कहो या दुआएं कहो वो अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुबारक निकले वह दुआएं निकले ऐसा शब्द निकालो जो मुबारक

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। बच्चे सब वाह।

सदा रहेंगे यहां भी, सदा सदा बाबा। बाप सदा बाबा न तैरना, तब तो याद करते।

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं।

y Siena, hoy Baba, toque a boca, coche. कुछ भी बात हो जाए, आई और गई, आप क्यों उसको पकड़ लेते हो? कोई बात

आजकल की मुरलियां सुन

0: chất Bồ Đề.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा कितना वे आने का कारण थे अपमान का, मैं शब्द थे पान का, मैं एक है, मैं आत्मा हूं ये मैं, अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरा। तो बाप दादा आज क्रोध जीत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: But so

Slow.

did.

See.

Yeah.

सभी बच्चों को, सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से

संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शव भावना, शव कामना परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकते। इस सेवा के विस्तार में सेवा के विस्तार के संबंध में स्वामी।

श्रेष्ठात्मा देवात्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठात्मा।

स्वरूपसे। समान संपर्क में हो, हर समय चेक करो सीबीआई।

0: viajar. Coi. Por Sharat me. Menat samaste. Tu sabse sej por Sharat. Sara den. Sabse tuai to tuai no.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है, उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है। उसके साथ साथ कोई एक भिन्न-भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाए। तो जैसे योग के बारे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका पहचान रिजल्ट तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहते हैं कि संस्कार के सब्जेक्ट में जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे। हो जाएगा, अटेंशन में आए ना तो हो जाएगा। लेकिन अटेंशन ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

よし。

sick of Kushlady.

और

cosa terra. Cosa terra. Così. Chi fisiste? Oh, shit.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: भी किनारा नहीं करता।

Pisar, aí, mano.

सभी बच्चों को रिवाइज़।

What do you mean?

Kas sampai pretes sampai

Sat yogi.

Samantha Avergarria.

sentiste? Coi, coi, pachi. Coi, coi, samen.

ます。

perché anche te vai, vai. Why am I coming in?

Flag para pasar.

Exactly.

elevar-se. Vá gerir-se. Видео.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसके आवाज में ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Zone.

Oye.

0: उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्मा अनुभव सुना है तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा कर,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले निमित्त बने हुए हैं। भले फर्क है

ใจ

मुबारक भी दे दे। कि बा बच्चे बा, ये बाप और बच्चों

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Ciao.

Shit.

जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कितने सर जन्म की आदत है बोझ संभालने की। बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है, मजबूत। Revise.

Kaçık.

0: सामने रखो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता, जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी निमित्त बने हुए हैं, उन द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते वह कभी मन आपका मालिक होता? क्यों?

0: sigaro. कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता, क्योंकि इस समय बाप दादा ने हरेक को
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, अब माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है, देखा है? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो
2: Хорошо.

0: i skogarna där som bratt svarar.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया के हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं, तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के को न खाओ। अनुभव किए है ना, पुराने जो पहले पहले आए है उन्होंने अनुभव कर लिए, कभी भूखे रहे और ही जो गुण है ना उसको बोरन बीटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था। और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते हैं सबका पेट भर गया। बोरन बीटा बनाने आते हैं ऐसी भी हालत हो, ये गुर सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, ये बोरन वीटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आई वेल में ये बोरन वीटा बहुत काम में आए। चार बातें याद करना, ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो, चार ही बातें हैं, सच्चाई की, दिल की सच्चाई। दिल बड़ी, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वो पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है ना वहाँ सब इच्छाएं पूरी हो जाती। दिल छोटी करेंगे तो सामग्री सब छोटी हो जाती।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Wow. नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होते हैं। तुम पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है थोड़ा मर रही है क्या? ब्रह्मा जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रही है और इतना श्रेष्ठ भाग्य उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस वाली मुक्ति वर्ष बना रही हो ना, क्या क्लास कराते हो मुक्ति वर्ष है? मुक्ति वर्ष है 99 में आना है, 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वो हाथी लाओ ताली नहीं बजाना। अच्छा अच्छा अच्छा सभी हाथ उठा रहे। अच्छा अच्छा देखो हाथ लाना बहुत सहज होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो। जाता है। युक्ति युक्त बोल, साधारण बोल भी Wow.

समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट Shut up.

Eco.

suami sama Faredi jodoh baca biaya teachers biaya kerana teachers itu sama panuhnya kemarin biaya perverti vale biaya sama Faredi ajar sabi ko chance diya ye baat ajar bachon ki to kaafi samay se aari si thi tina bache hum ko kab chance milega milne to acha hua Sarva Faredi ka Guldasta Baap ke saamne hai Bacche haath uthao Jo bacche hai Woh haath uthao Achha Achhi tarah se Haath hilao Dikhai de अच्छे अभी नीचे करो नीचे नीचे करो बच्चों से तो बड़ों का प्यार होता है से भी बच्चों का प्यार और सभी बच्चे आज के प्रमाण है कल के क्या बनेंगे बोलो बच्चे कल क्या बनेंगे देवता बनेंगे अच्छा कौन सा देवता बनेंगे पता है

خوش هو رہی ہے، واپ اچھے بات.

0: साथ को कभी नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मना के बाद ये रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना, बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वो चाहते तो सभी है। बाप दादा आज शिकले देख रहे हैं, चाहते हाँ करेंगे करेंगे करेंगे लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी बुला देता है। वेस्ट कदम एक मिनट अभी भी एक मिनट

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just got

啊。

Something.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सहज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों? बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसरा जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है। कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या? याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अगन है, अगन कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती। लोहा भी बोल्ट बन जाता है, ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकता। विश्व परिवर्तन करेंगे, तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपने मुश्किल को नहीं मिटा सकता।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है, था और है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

Sad.

Beep.

0: सम्पन्न बने, समान बने।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखते हैं ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी छुट्टी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

पास वापस तो नहीं आई? दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मान। Love.

Let's see.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोग जोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के व्रत भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ के कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं रहा। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सब निमित्त बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा जब अमृत वेले चक्कर लगाते हैं विश्व में, तो देख देख सुन सुन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा से मिलने तक पहुंचे हो, आगे

0: कभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब 9 लाख आएंगे तो साधन स्वतः ही जुट जाएंगे। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। सब साधन मिल जाएंगे, बने बनाए हाल आपको मिलेंगे। बनाने नहीं, सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो सफलता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं, अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगा, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक, जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसम, इसको कहा जाता है योग। अगर नाम निशान समापन मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, पसम होने के बाद नाम निशान खत्म, तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ, जिस स्वरूप में रहने जाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान, आर्डर करो समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से, नहीं माने ये हो नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो नए नए बच्चे

Let's go.

Mío, aparte ya. Peace.

Jam.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, आज स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को नहीं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम युग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने जाए थे दूसरों का दुख देख करके भी, आपके भाई है आपके बहन है दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमार्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सी बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप दादा गारंटी दे रही है कि इस समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, बारिश क्वालिटी की बारिश पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है इसमें सहयोगी बनो, नहीं सहयोगी स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण पास कराने की नहीं, वो बहुत करानी है। वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर ली, जो आए वो छाप लगे 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सदा दृढ़ता, सफलता की चाबी को संभाल के रखना, क्योंकि ये चाबी माया को भी बहुत प्यारी, इसीलिए दिल के डब्बी में इस चाबी को संभाल के रखना। दृढ़ता ही सफलता की चाबी, और सफलता पाप के समान बनने का सहज साधन। सदा निश्चय और निश्चित भावी है, स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी, ये दोनों निश्चित है। ऐसे नशे में, फखर में सदा उड़ते रहो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

ऐसे तो आप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन उठाने से आपको ये हाथ उठाना भी मदद करेगा। इतने संगठन

Jesús.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Quiero.

чамак. Сарва атма ме срешта. Сарва се.

रूहानी रायलिटी।

Sarefisch, okay.

0: सारे क्लब में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये फरिश्ते पर

शब्द बोलते हो पहले

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कब
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा, ब्रह्मांड जीवन अर्थात वाह शरीर व्याधि में भी आय
2: भी हो जाए, पासे तो रूप में देखो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, हर बच्चे को आज विशेष

संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना

कुछ तो पड़ता है।

house.

0: saat maki bi kalian kiblat shubhavna shubhkamna.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

वचन उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत बिना बिना बॉस बदलते रहते, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं शरीर ही बदलेंगे, फिर सोचते हैं शरीर ही माना।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, अचानक के खेल होने कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं कि समय थोड़ा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है
2: खुशियों का संगम।